कि तुझे भूल ही जाए एक दिन। रात ढलती है तो तन्हाई सिमट आती है, चांदे सफर बाकी है। अब शिकायत भी नहीं, जो मिला दर्द वही मेरा हुनर बाकी है। तेरे बिन जी तो रहा हूँ मैं जमाने की तरह, पर मोहब्बत का वही पहला असर बाकी है। आखिरी सांस तलक दिल ही कह होगा, सच्चे रिश्तों का सदा नामो निशान बाकी है।